पिता बच्चे का भला लोड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होया सुजान बाप ने सूझवान मां ने बच्चे नू किते मारिया भी हो लेकिन उस मारन विच भी भला छुपे उस तारन विच भी उसके जीवन का शुभ चिंतन का भाव है। उस बच्चे की जिंदगी बना देने वास्ते किसी वेले थोड़ा बहुत घूरिया भी हो। इसे तरह कदे कदे ऐसा भी होया तुसा वेखिया है बच्चा बहुत सतानिया करता बहुत नादानिया करता मां नू बड़ा तंग किया बड़ा परेशान किया। शाम पई है बाप घर आया ते मां कहिंदी देखो जी तुहानू एक गल कहनी कहो काका हुण हत्थां च नहीं रहिंदा बहुत तंग करता बहुत परेशान करता सारा दिन गुआंढियां दे बच्चियां नाल लड़दा है हालांकि बच्चे ने कादा लड़ना बच्चा बड़ा निर्वैर होंदा इहदी लड़ाई बड़ी आरसी होंदी इधरों लड़दा है ते जिन्ने चिर नूं इहदी हमायत विच उहदे मां प्यो कट्ठे होंदे उन्ने चिर नूं फिर मन के खेड़दे पैंदे। पौला भाव है लेकिन मां शिकायत कर रही कहिंदी आंढियां गुआंढियां नाल लड़दा है गलत चीजां नूं हथ पाउंदा है उलामे आउंदे ने ते जिवें जिवें ओह गल्लां करदी है ना उवें उवें बाप दी अखां च गुस्सा आउंदा चलिया जा उहनूं इस गल दी घबराहट है इह बच्चा नलायक हो जाएगा ते मेरा नां डुब्बेगा मेरे नां नूं कलंकित करेगा उहनूं गुस्सा आउंदा चलिया जा रिहा ते मां इह वी वेख रही है कि इहनूं गुस्सा आ रिहा ते फिर कहिंदी देखो मैं तुहानूं कुछ नहीं कहना हुण कुछ नहीं कहना जे तुसीं बच्चे नूं कुछ कहना ते फिर मैं तुहानूं कुछ नहीं दसदा मैं तुहानूं इह बेनती करनी है भी इह ठीक है उहनूं समझाउण दी लोड़ है उहनूं परचाउण दी लोड़ है पर आखिया जे कुछ ना भाव मारिया जे ना।

कोई ना ठंडी। उस चंद्रमा की रोशनी छावे भी बड़े लोग तपते सड़ते पै रहे। सर्दी की रुत बंदा कवे कि गर्मी जड़ी है बड़ा परेशान करती है, सर्दी की रुत ठीक है। वो जेडे पहाड़ा ते पर्वतां विच रहिंदे ने, बर्फां च रहिंदे ने, कि वाकई बड़े सुखी ने। शायद साडे तुहाडे नाल हो सकदा ज्यादा भी दुखी हो। बंदा तां दुखी है महाराज, कहिंदे शीतल थीवै नानका जब बदलो हरना। तेरी तपश दा कारण यह है कि तू रब तो टुटा। महाराज कहिंदे ने एक कारण की वरतिया, होई गलती तेरे को, बुरे काम को ऊठ खलोया। जिस वेले उठना चाहिदा सी उस वेले नाम की बेला पै पै सोया। उठे कमां नूं तां उठ के तुर पिया, चंगे कमां वेले सुता रहा। अवसर अपना बुझे ना ए आना, फिर सियाणा किस तरह कहिए, अनजान बड़ा मूर्ख कहना पएगा। माया मोह रंग लपटाना, लोभ लहर को बिग सफूल बैठा। लोभ नूं लै के तां तुरे है, लालच नूं लै के तां तुरे है, पर जिथे आके सत्संगत दा सवाल होया कहिंदा की लैणा है। ध्यान देना भगती दे मार्ग ते जेड़ा बंदा ये सोचे ना की लैणा है, वह नहीं तुर ही नहीं सकता, वह इधर आए कदम भी नहीं आ सकता। इतने का सवाल है की देना है, किन्नी कु खेचल करनी, किन्ना कु उद्यम करना है, किन्नी कु काल करनी, किन्ना कु बंधन च पैना है। ये बंधन च नहीं पै सकता, मथा नहीं टेक सकता, न्यो नहीं सकता, बज के बैठ नहीं सकता, गुरबाणी का अध्ययन नहीं कर सकता, गुरबाणी नु समझन दा तेरे कोल उद्यम नहीं है, ते फिर नहीं गल बननी। फिर ये भगती वाले पासे समझ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। ये तो औखे होने वाले का काम है। अंतरी तुक रहाओ दी तुक च, दूजी तुक च महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, तौ किछ पाईए जे होइए रेना, जिस बुझाए तिस नाम लेना। साहब दी रहमत होवे जिन्हां नूं नाम प्राप्त हुंदा है, पर उन्हां नूं प्राप्त हुंदा है जे कोई मिट्टी होना जानदा, जे कोई रेन होना जानदा। जे बंदा कहे बस बैठे बिठाया सुख आ जाए ते कोई नहीं आउणा, जे बंदा कहे वो जिहड़ी गल आपां रोज नित पढ़ने आ ते बहानेबाजी विच कई वारी ये भी कह देने, खाओ पियो मौजा करो। महाराज कहंदे ने हसंदे आ, खेलंदे आ, पैनंदे आ, खवंदे आ, विचे होवे मुक्त। बहुत हुज्जतबाजा ने यह गल भी कही है, कहंदे जी महाराज कहंदे ने खाओ पियो हसो खेडो आपे मुक्ति हो जाए। लेकिन वो पहली तुक किन्ने पढ़नी, मूल किन्ने पढ़ना है। महाराज कहंदे ने नानक सतगुर भेटे है, गुरु नाल गल हो, गुरु नाल सांझ होवे, ते नाले फिर गुरु के अनुसारी होके पूरी होवे जुगत। हुण गुरु के नाल सांझ पा के गुरु की गल सुन के पूरी जुगत की होवेगी। अमृत वेले जागना, इशनान करना, चौंकड़ा मार के नाम जपना, नितनेम करना, सत्संगत विच आउणा। जो भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरसिखी दीआं निशानियां लिखियां, जो साहिबां ने साहिब गुरु रामदास साहब ने पावन बाणी गुरु सतगुर का जो सिख आखाए सो भलके उठा, वह जेता वह जुगत धारण कर ली, ते फिर तां तेरी हसंदे आ, खेलंदे आ, पहनंदे आ, खावंदे आ, विचे होवे मुक्त। नहीं तां किवें हो जावे, हसण खेडण नूं तां जी करदा है, गुरु की जुगत तो भजेगा ते गल किवें बणे। महाराज कहंदे ने तिनका खाधा पहिंदा माया सब पवित है जो नाम हर राजे। उनका खाना पीना पहनना हसना खेडना सारा कुछ पवित्र है। जेडे नाल नाल वाहिगुरु दे नाम नाल रते लोग, नाम जपण वाले लोगों का यह सारा कुछ सफल है। पर जेडे टुटे हुए ने तले पासे, महाराज कहंदे खाना पीना हसना बाद जब लग हृदय न आवे यार। जे वाहिगुरु चेते नहीं ते सारा कुछ जेड़ा है बेकार हो जाएगा, बोझ बन जाएगा। पर इहदी इक जिम्मेवारी है साडे ते, असीं जो कुछ खांदे पींदे पहनदे पए आ इह सफला करदे आ कि नहीं। गुरु की दात है जीवन, प्रभु की दात है जीवन, सफला कर रहे हैं कि जीवन के स्वासा की पूंजी लुट रही है। किते सप की तपदी सड़दी आरजा वांगू असीं जीवन का बोझ तां नहीं तोरे। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे आर जारी, नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी। इस तरह हार के तरह तुर जाना होगा। महाराज कहते हैं नहीं, कुछ होना है, कुछ रेण होना है, कुछ पाना है, कुछ लभना है, कुछ करके लभना। उस तरह नहीं जिस तरह संसार के आम लोग कर रहे ने, कछु ना समझे कभू ना समझे अज्ञान गवारा, बौर बौर लपते हो जंजारा, जंजारा विच जान जान के पैर पाउंदा। पिखे नाद करन सुन पीना, हर जा सुनत आलस मन कीना। बागा वाले ने जिन्हां नूं बाणी मिठी लगदी, धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह सिख बैठे ने,
एक प्रेमी ने सवाल किया सी, कहन लगा महाराज दिन चढ़दा है उहदियां कुछ निशानियां ने, जीव जंतु बोलन लग पैंदे ने, पता लगता है दिन जाग पे, सूरज चढ़न वाला हो गया, दिन आ रहा है, रात खत्म हो गई है, समा बदल रहे है, मोर बोलते ने पता लगता है बदल आ गए, कोयला बोलदियां ने पता लगता है सावन आ गया, पपीए बोलते ने पता लगता है हार तप रहे, बादशाह जिसने फुल खिड़ते ने पौरिया दिया गुजारा ऐलान कर दिया ने बहार आ गई, महाराज प्रकृति जागदी है, संसार तब्दीलियां वापरदियां ने ते पता लगता है उहदा ऐलान हुंदा है, ते सिख विच बंदे विच प्रकृति प्रवृत्ति आवे, इहदे अंदर कोई तब्दीली आवे, इहदे अंदर कोई क्रांति जागे, मनुख दे अंदर कोई होशमंदी आवे, इहदी भी कोई निशानी है, बंदे दा पता लग सकदा है, मनुख दे मन विच कोई जागृत आवे, इहदी भी कोई निशानी है, ते महाराज पंचम पातशाह कहंदे ने, भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, महाराज पंचम पातशाह कहंदे ने सिखो बड़ी सुधारण जी गल है, मृद लाग गए मन गुर की बाणी, मन जागण की है निशान, जिस दिन तुहाडे मन नूं गुरु की बाणी मिठी लगन लग पवे समझ लेना मर जाग, जिवें सारे कुछ दी तब्दीलियां च सी, कुछ ना कुछ संकेत लभणे आ ना, कुछ ना कुछ इशारे लभ लैणे आ, कोई इशारा हो गया पता लग गया कोई तब्दीली आई, इस तरह मन जागण दी ये निशानी है कि बाणी मिठी लगे, कीर्तन मिठा लगे, ते जे इत्थे आके मानण लगे समझ लेना मन विच कठोरता है, और महाराज कहंदे ने जिनके चित कठोर है से बहे ना सतगुर पास, अमल तां आउंदे ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, कहंदे ने वक्त नहीं मिलता, हालांकि वक्त बड़ा है, खिमा करना युग केड़ा सी, बजुर्गां ने वेखिया जदों गड्डिया ते सफर करदे सी, अज हवाई जहाजा दे सफर, उदों हथी काम हुंदे सी, अज मशीनां नाल काम हुंदे, महीनिया के कम घंटिया ते आ गए, आ बीबियां कपड़े सीन पैंदियां सन महीना महीना ला के, ते एक त्रियोर बनदा सी, आ दो तीन कपड़े सीदियां महीना महीना हथ दियां सुइयां नाल, अज सीते सताए मिल गए, समा तां बड़ा बचना चाहिए सी, पक्कियां पकाइयां रोटियां पिसे पिसाए आटे, घर विच पानी, घर विच बालन, हर एक चीज की इन्नी सहूलत, बिजली दे बटना ने सारे कमां नूं कितना आसान कर दिता, ते बंदिया तेरा वक्त किधर गया, तेरा समा किधर गया, तू यह नहीं कह सकता मेरे कोल समा नहीं, ए कह लै कि तेरे कोल होश नहीं, समा समा नहीं, ए तां कह सकने आ, ए ना कहीं मेरे कोल समा नहीं, ए गलत बहाना होगा किसे मनना नहीं, नीयत ना होगी, जिन्हां की नीयत होगी ना उन्हां नूं गुरु की बाणी मिठी लगेगी, ताके आउणगे ते सुणनगे, ते जदों गुरु के चरणा विच मन टिक जावे समझ लेना मन विच कोई जागृति कोई तब्दीली आ रही, ते जिन्हां नूं नहीं पई आउंदी महाराज कहंदे ने जिनके चित कठोर है से पहे ना सतगुर पास, वो गुरु के नेड़े बैठा ही नहीं जाता उन्हां कोल, ते जे कदे फस जान आ जान, फसे ही कहना चाहिए, जे आ जान ते फिर वो पासे मार दे वक्त कटदे ने, ओए वल छल कर झत कट दे फिर जाए पैन कुल, क्योंकि उत्थे सच वरतदा कुड़ियारा चित उदास, ओए वल छल कर झत कट दे फिर जाए बहन कुड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ ना कढ़ी मन वेखो कर निरदास, ते जे मन ना लगे बाणी विच समझ लेना मन कठोर है, इनू नरम करना है, इनू किसे तरीके नाल बलबला के लियाउणा है गुरु की बाणी विच, पिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनत आलस मन कीना, दिष्ट नाही रे पेखत अंधे चोट जाए झूठे सब तंदे, अरदास करिए कहो नानक प्रभु बख्श करी जाए, कर कृपा मुझ साध संग दी जाए।

काल खाए कि छत होंदे, काल खाए कि छत होंदे, नानक रा पछाणे से गुरसिखी दी ए निशानी। हाँ तिसू विचों आ रहा, हाँ तिसू विचों आ रहा, मान होंदे होई नी माणा, हाँ तिसू विचों आ रहा, हाँ तिसू विचों आ रहा, तान होंदे होई नी ताणा, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਰਿਆ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪ ਹੋਏ ਆਣਾ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आउंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

अवगुण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नू कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जाता औगने आरा मनुख पशु है गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है औगना दे वस पै के बंदा थले गिर जाता अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता अवगुण मनुख दे गुणा नू कटदे ने दी हस्ती नू कटदे ते सतगुरु अवगुणा नू कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे औगण कटे जांदे ने गुण निसरदे जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मुआ ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है ऐसा जीवन बख्शिया है जेड़ा मौत तो ऊपर है और आप देखते दे हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी पहला मरण कबूल जीवन की छड आस औगण मर जांदे नकारा मनुख मर जांदा एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा गुणा दा जन्म हुंदा दैवी गुणा नू लैके मनुख उपर नू उठदा गुरु नू प्यारा लगदा गुरु नू पाउंदा है संसार नू चंगा लगदा और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश की है सानू जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी तेरे चरनी लगन तो पहला साडी की अवस्था सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए सरदार हो गए मान वाले हो गए रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे जिंदगी विचों संताप निकल गए चैन आ गया सुख आ गया जीवन में कायर होंदे सां बहादुर बना दिता नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता आलसी होंदे सां उद्यमी बना दिता बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता परोपकारी बना दिता और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है अमृत दियां दातां दे के नाम दियां दातां दे के बाणी दी सौगात बख्श के जीवन दा सुचज बख्शिया है साहब कहिंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हो सदा घुमाया मैं वारने जावा सतगुरु तो तिस गुर को हो खनिए मैं टोटे टोटे हो जावा बलिहारने जावा उस तो जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया तिस गुर को हो वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने तिस सतगुर को वड पुन है उदा कोट आन कोट धनवाद उन्हें बड़ा पुन कीता मेरे ते जिन अवगुण कट गुणी समझाया सदा उस सतगुरु नु चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है उदा परउपकार साडे सिर ते उदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बसाने साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के अपने प्यार दी निशानी ला के अपना बना के अपना रूप दिता है अपना सुचज बख्शिया है अपना प्यार बख्शिया है
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

अपने अमृतमय बचना विच राग आसा विच वर्णन कर दे ने, हे मेरे वाहिगुरु तेरी जो सर्व व्यापक है, जिथे भी मैं जाना उथे मैनू तू ही तू नजर आना, जे मैं कदी मक्के विच जाना ते उथे मैनू तू नजर आना, ते जे किसे मंदिर विच जाना उथे मैनू तू ही नजर आना, तू सर्व व्यापक है।

लगी और न यहे महत्व में अवतारी उजागिर यान कियो। तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन।

अपने आप था जियने, आपे ही थम खलोवा, आपे पट्टी कलमिया, आप लिखन हारा हुआ सब उमत।

संतोख तरियोरे आदि पुरख पर तक लिखो अखर मस्त कितुरे प्रगट ज्योत जग मगे तेज पूमंडल छायो परस परस परस परस गुरु।

शाह साहिब की बात जे आखाए कहो नानक क्या दीजे शीस बंदे कर बैसन दीजे बिन सिर

सिफ्त सला करन वाला, कीर्ति करन वाला, उसनु गुरु महाराज ने ढाडी का नाम दिता है। इतिहास विच पुराने ग्रंथा विच जिक्र आउंदा है कि भगवान की उस्तत करन वाला जो हर वेले अपने हत्थां दे विच वीणा लैके रखदा सी, जिसका नाम नारद करके आया है, हर वेले प्रभु की उस्तत करदा सी, कीर्तन करदा सी परमात्मा। एक वेर नारद भगवान ने प्रभु कोल एक सवाल किया, है भगवान जे तेरे दर्शन करने हो ता दस कित्थे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु का मिलाप पावे कोई आखे के हत्था दियां हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दें, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दें, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे। उसके ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होने तक कितने दर्शन करा। तो कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा, ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने हो ना मैं किसे दक्षण विच वसदा हाँ, ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ, ना किसे मस्जिद विच, ना किसे गुरुद्वारे विच, ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वो भरम विच है। जे मैनू लभना होवे तां मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन, उन्हां दियां जिथे जुतियां पईयां होवन, उन्हां दी जुतियां दी थां दे उत्ते उन्हां दी चरण धूल दे विच मेरा स्थान। भगवान अपने भगतां दे वस है, उन्हां दी संगत भगत जिहड़े हन भावें जिथे मर्जी उसनू प्रगट कर लैण। भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विचों वी प्रगट कर लैण, जे भगत ने चाहिया तां उस परमात्मा कोलों अपनी खेती दे विच हल भी जुताया, अपने डंगर भी उस कोलों चुगवाए। ए भगता दी खेड है जिन्हां नूं प्रतख दर्शन हुंदे हन उस वाहगुरु दे। परमात्मा ने कहा है, ऐ नारद मेरा घर मेरा स्थान साध संगत दे विचकार है, उस तो सिवा मेरा कोई स्थान नहीं। जिहड़े उस्तत करदे हन, सिफत सलाह करदे हन, इक मन होके जपदे हन, कीर्ति दे विच जुड़े होए हन, निष्कपट होके, निर्छल होके, निस्वार्थ होके जिहड़े कीर्ति करदे हन प्रभु दी, उन्हां नूं मैं प्रतक अंतस्करण रूप विच अंतर आत्मिक दर्शन दिंदा हां, उत्थे मेरे दर्शन हुंदे हन। और भगत नारद इतना प्रभु का निकटवर्ती सी, प्रभु की प्रसन्नता सी उस भगत नारद उत्ते, क्योंकि वह कीर्ति करने वाला सी। तो गुरु महाराज ने गुरबाणी दे विच कीर्ति करने वाले, कीर्तन करने वाले, सिफत सलाह करने वाले ढाडी का नाम दिता है। आखते ने गुरु पातशाह।

की प्रयोजन लेके आया है ता अगों गुरु पातशाह जी ने एक सवाल कीता, एक मंग कीती।

ऐसा सवाल लेके इक वेद गुरु नानक भी अपने कर्ता पुरख वाहिगुरु दे उस पवित्र स्थान ते पहुंचे सन। लोकां ते भावे उस वेले समझिया सी कि गुरु नानक वेई नदी दे विच इशनान करन दे बहाने डुब के मर गया, क्योंकि मोदी खाने दा हिसाब तेरा तेरा करके लुटा दिता। ते जदों हिसाब मंगिया गया होवेगा उस वेले बहुत सारा घाटा जिस वेले नजर पिया होवेगा, तां गुरु नानक वेई नदी विच डुब के मर गया। ऐसी ना समझ लोकां दे ख्याल जिन्हां ने कदे गुरु नानक नूं पछाणिया तक नहीं, लेकिन जिन्हां ने पछाणिया जिन्हां ने गुरु नानक नूं जाता, बेबे नानकी कहिंदी है मेरा गुरु नानक जिहड़ा डुब्बिआं नूं तारन हार है वह आप किवें डुब सकदा है, उहदा इह कोई कौतक है। और सचमुच जदों तीसरे दिन फिर गुरु नानक प्रगट होए और उस वेले संसार दे सामने एक ऐसा पैगाम लेके आए

जो गुरु नानक नु सब तो पहला मिलया सी। जिस वेले पहुंचे सन गुरु नानक और प्रार्थना की अपने निस्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा विच, भाई गुरदास जी अपनी पवित्र बाणी विच कहंदे हन।

कोई ऐसी वस्तु दे जिसनू मैं संसार दे खुले पटके लोकां नू जाके वरता सकां। अरदास करते हैं

से मेरी नजर। मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुरु परमेश्वर। जा संसार थी मेरा नाम जपा, सड़दे बलदे लोकां नूं ताकि शांति आवे। गुरबाणी विच महाराज ने फरमान किया है कि ऐसा अमूल खजाना बख्शिश किया उस वेले जदों के गुरु नानक पहुंचे सन अपने उस माल।

0: कि तेरे कोल शक्तियां सारियां समर्था सारी है पर तू वरतदा नहीं तू जरदा है तू वखाउंदा नहीं प्रगटाउंदा नहीं तू शरा वो जिहड़ी ताकत है वो रिद्धि सिद्धि है वो शक्ति है उसनु वखाउंदा नहीं प्रगटाउंदा नहीं बल्कि जर के दिखाउंदा मेरे सतगुरु क्योंकि तू लोकां नु जीना भी सिखाना है जरना भी सिखाना है मरना भी सिखाना है तेरे कोल इजाज है तू इसका मास्टर है ते लोग तेरे कोलों सिखदे ते जिन्हां नू आ गई ये जाच जिन्हां नू जीना आ गया जिन्हां नू मरना आ गया जिहड़े इक सुर हो गए ने वाहगुरु नाल वैसे तो मरना सारियां ने तुर मरण लिखाया पर गुरमुख मरदे ने ते मौत जिहड़ी बड़ी भयानक है ओह खूबसूरत हो जाती जन उभरे हर हर ध्यान जीओ मौत इस भयानकता तो रब दे बंदे बच के निकलते हैं वखरे होंगे ने अलग होंगे हर सोभा पाई वो आप ही शान नाल जीउंदे ने पर जूदे किस गल दे शान किस गल दी हर नाम बढ़िया हर दरगाह पैदे जान जीओ वो सच्ची दरगाह विच प्रभु दी दरगाह विच सन्मानित होए हुए जांदे असरोपा देने आ सन्मान देने आ किसे दी चंगी करनी हो निरंकार दी दरगाह विच भी मान होंदा हर दरगाह पैदे जान जीओ दरगाह च सन्मान होंदा उहनां दा हर दरगाह पैदे हर नामे सीधे जिहड़े नाम दे नाल अपने जीवन विच सुचज पसार के सोहना जिहा जीवन जीउंदे ने दरगाह विच सन्मानित होंदे ने हर नामे ते सुख पाया वह असली सुख नूं प्राप्त करदे ने जिंदगी दा असली सुख ओह मानदे ने बल्कि मौत विच वी उहनां दा सुख बंद नहीं होंदा उहनां दे मगर लग के उहनां दे पूर्णियां ते चलण वाले भी इस सुख नूं मानदे ने आपां रोज़ याद करने आ उहनां नूं जिन्हां गुरमुखां ने नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही धर्म हित सीस दित्ते बंद बंद कटवाए चंगड़ियां ते चढ़े वह जिन्हां माइया बीबियां ने मीर मनू दे घोड़ियां विच सवा सवा मन पीसन पीसे खनी खनी रोटी ते गुजारा कीता अपने बच्चियां दे टोटियां दे हार गलां विच पुआए तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया मेरे पातशाह धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ओह तेरी पैड़ ते तुरन वाले तेरे पूरियां ते तुरन वाले लोग सन जिन्हां नूं जीना भी आ गया ते मरण दा भी सुख लैंदे ने उन दा सुख तत्तियां तवियां ते भंग नहीं हुंदा उबलदियां देगां च भंग नहीं हुंदा आरियां नाल चीरे जा के भी उन दा सुख टुटदा नहीं
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live for 24 hours a day from around the world.